जैसे मन अच्युत कुटुंब ही सहत है, बंक तन सूतो बिल पैस तो है जियस है। मात पिता अच्युत ना बोले

तारी है, चुन चुन सतरंग मारे मारी है, आपा दम जावर है, मरण काल का त्रास निवर है, वो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्त जो करो रक्षा, राख लो मेरा कनहारे, साहिब संसाई प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम ऊपरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बप्तरा, काल पाए शिव जी अवतरा, काल पाए

देव दैत जशन उपजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सब प्रजा जने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोहबत कियो कट कट के अंतर की जानत परे बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सपर कृपा दृष्ट कर पूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाण कट कट के पट पट की जाने जावे उद करक करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जावे आ करक कर तो कबू तुम मिलत दे तर सबू

भेद अरियालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद्य अनिल अनाद्य असंभ ताका मूल उचार्थ पेता जाको पेव न पाप वेदा।

दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काल कृपा दृष्ट तन जाय निहर हो ताके ताप तन कमो हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट इच्छा स्वय सकै न कोई

ताकी है करते का हुए बिचारो तित कर गाव हो सोहेला सिवरे हो सिरजन हारो तुम गाव हो मेरे निरभव का सोहेला हो वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जी अड़े सुमालियन देखा गा दे मनहार तेरे दान कीमत ना पवै तिसदा ते कमन सुमार संबत साहा लिखिया मेर कर पाव होते देहो सज्जन असी सड़िया जहो वै सा करे हो पहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सुमरी नशे देवन राग आसा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुरे को वेस अनेक बाबा जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो रहाओ विसोए चसया कड़िया।

दुख पावह जमकाल सह सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेसरा बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे। जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनहो मेरे मीता। संत टहल की बेला ईहा खाट चलहो हरलाहा कै बसन सुहेला। औद कट दिन सरैनारे मन गुरमिल का चुवारे रहाओ। एहो संसार बेकार संसे मह तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जैसा जगाए पिया वाय हो रस अकथ कथा तिन जानी। जा कौ आए सोई बिहज हो हर गुर ते मन है बसेरा। निज घर महल पाव हो सुख सह।

ते लेहु बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किल बिक सकल देह को हरता, दोष दोखियन को छकरता, श्री अस्तो जापय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख नत सब आपत कोई अड़ेल।

ओ जो जाति एक बार जाओ पाई को कह जाओ पाई संबत 1700 जाए अर्ध सहसपुण तीन कही जाए भाद्रव सुधी अष्टमी रारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाएं गए हैं जब ते तुमरे तब ते को आंकत्रे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक न माने हो सिमृत शास्त्र वेद सबाई बहु भेद कह हम एक न जाने हो श्री असपान कृपा तुमरी कारू मैं न कहो सब तो हिम खाने दोहरा

सचि त्रिखण सच ब्रह्मण सचि त्रिलो सच आकार सच तेरे करने सर विचार सच धर्म सच दीवान सच त्रहुकुम सच फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तुद अख लख करोड़ सचा सप्तान सचा सब जोर सची तेरी सिफत सची सलाह सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच ते

वै अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन त्यावन जे त्या लख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया कायाकार सत्य मन संतोख उपजे देने।

पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ भरिए साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खात, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास।

गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।